0: Laika Gold
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें Laika Radio Sales ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk।
2: ताज़ा करें अपनी यादें Laika Gold के साथ।

उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई हैं, एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई हैं। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहू मैं कह न कोई। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईयां चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा हदूर। कथना कथी ना आवे तोट, कथ कथ कथी कोटी कोट कोट। देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाई खाए। हुक्मी हुक्म चलाए राव, नानक विकसै वे परवाह। साचा साहेब साच नाही।

सुनिए हाथ वह सगा, नानक भगतां सदा विगास, सुनिए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कहीं ना जाए, जे को कहे पिछ

जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक न पाए, मन्ने पथ्यों प्रगट जाए, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने धर्म सेती संबंध।

मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वड़ियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

आहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अवर।

अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार, कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विच

0: Breakfast with Deep Rancher.
1: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
2: सितंबर महीना में हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे. ઇલફર્ડ સાઉથ લંડન અને લ્યુટન માં ટિકિટ અને વધુ માહિતી માટે આજે જ કોલ કરો મંજુ ને ઓન 07931534270. નાટક નું નામ યાદ રાખજો.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
4: साफो ट्रेवल at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
6: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
7: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. 2 departures November and February, it's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
8: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods Potato Chips now.
10: Dubai is coming to London.
11: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
10: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
11: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
10: Hurry and register now
11: at nknpropertyexpo.com.
10: Your next investment could begin here.
11: Official radio partner, Leica Radio.
0: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London. Breakfast with Deep Rancher.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: And a pound in your pocket can get you 129.24 Indian rupees, 375.61 Pakistani rupees, not forgetting 443.81 Sri Lankan rupees and 1.35 US dollars.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And the gold rate is currently starting at 105.92.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: Okay, I'll lead the next songs up to the news and I'll speak to you all after that. Good morning.
3: Leica Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: London. Jay's Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shiv Dasani. Playback singer Aman Trikha. Aur soulful singer Mayuri Patalia live Harrow mein. Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: 0730-99-8823. नोट किया किटी पार्टी बिजनेस मीटिंग कॉर्पोरेट इवेंट फैमिली ओकेजन बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को सर्विस एक्सेलेंट फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे विवेक हाउस वॉटफर्ड बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-99-8823
6: We're finally going home for the wedding.
7: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked. Booked, outfits packed, but what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
7: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destination with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
7: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
9: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: The wait is finally over.
11: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
10: Mirzapur is coming to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
13: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 5 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
14: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा
15: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
16: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananda Ji ke Pavan Sanidhyame. 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी जिसमें पूजन दर्शन भजन कीर्तन और प्रीति भोजन इसके अतिरिक्त 4 सितंबर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल आप आइए और सबको लाइए
15: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holiday Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
17: Ilford, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
18: परंपरा भी,
19: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, Ilford, IG 26HA. कॉल 07555506015.

0: नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: दुबई इज कमिंग टू लंदन
3: दिस 5th एंड 6th ऑफ सितंबर। स्टेप इनटू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो बाय NKN मीडिया
2: एट लंदन हिल्टन ऑन पार्क लेन। मीट टॉप एलीट डेवलपर्स फ्रॉम दुबई, एक्सप्लोर हैंड पिक्ड रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड डिस्कवर व्हाट मेक्स दुबई वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग प्रॉपर्टी मार्केट्स।
3: स्पेशल अपीयरेंसेस बाय चित्रंगदा सिंह, सुनील शेट्टी, नरगिस फाकरी एंड अरबाज खान।
2: हरी एंड रजिस्टर नाउ
3: एट nknpropertyexpo.com।
2: योर नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट कुड बिगिन हियर।
3: ऑफिशियल रेडियो पार्टनर लाइक अ रेडियो।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन। इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल, 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल। आप आइए और सबको लाइए।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल protected।
8: पल भर के लिए
9: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज।
10: इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर, फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय 7-पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा।
9: गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर। टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट 25 pounds। बुक टिकट्स एट heroartcenter.com। बॉक्स ऑफिस का नंबर है 02023737161।
10: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network।
11: The wait is finally over.
12: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
11: Mirzapur is coming to the big screen।
13: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से।
11: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
14: अबे कालीन भैया है वो, किंग ऑफ Mirzapur।
11: पंकज त्रिपाठी एज कालीन भैया, अली फजल एज गुड्डू पंडित और Mirzapur के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। जस्ट 5 days टू गो। Mirzapur द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th।
13: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
15: है प्रसन्न महालक्ष्मी, कहती है बोलो प्रेम।
16: दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
9: बुक नाउ ऑन diwalistory.com। एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
17: 10 days South Africa every month from November to March. Book before the end of this month and get 200 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208-951-0111.
18: Breakfast with Deep Raja.
19: Okay, I'm going to play it one more time because it went a bit fast. Let's see if you can hear this again. Here we go. What was the name of this film?
20: बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है।
19: There you go. What was the name of that film? A couple of you have got it already, but keep going. There's still plenty of time. Look, Artist of the Week, by the way, is Chitragupt, also known as Chitragupt directly. Now, this is a beautiful song, very romantic, very, very, very poignant, even religious to a certain point. Enjoy it. Good morning.
18: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: Breakfast with Deep Raja. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. Visit heraldplastic.com.
2: Shri Ram Mandir, King Street, South Hall, invite you to the Shri Krishna Janmashtami Parv. Param Pujya Mahamandaleshwar Swami Gyananda Ji ke Pavan Sanidhya mein 30 August Ravivar ko 26vi Shobha Yatra subah 11:30 baje se Shri Ram Mandir se aarambh hogi, jisme pujan, darshan, bhajan, kirtan aur priti bhojan. Iske atirikt 4 September ko sham 8 baje se bhavya celebration at the Shri Ram Temple, 22 King Street, South Hall. Aap aaiye aur sabko laiye.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
6: अपना बनाया तेनू,
5: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का. वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड.
4: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823. Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: Honslo, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट, हाउसलो, TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
12: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
13: Hi, this is Chitrangi Das Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
0: Breakfast with Deep Raja.
14: हाय, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अ गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी. फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए.

0: लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में सिलसिला फिल्म का था ये गाना, और उससे पहले आपने बरसात फिल्म का गीत सुना, लव तुझे लव मैं करता हूँ, जिसमें कुमार शानू और अलका याग्निक गा रहे थे। और लीजिए दो गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो चुकी है, और आप सुन रहे हैं आपका मन पसंद रेडियो लाइक और रेडियो नेटवर्क, जहाँ पर ऋतु शर्मा आपके साथ है और सबसे कहती है प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और उम्मीद है आप सब बिल्कुल मजे में हैं। कल का दिन बहुत अच्छा बिताया होगा और आज भी आप सब मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं, ये आपके मैसेजेस बता रहे हैं। तो चलिए साथ देते रहिए प्रोग्राम में, मैं आपको ऐसे ही गाने सुनवाती रहूंगी।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा by SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions भी apply होंगी।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Leica Gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: यस, ये थी मन्ना दा और लता मंगेशकर की आवाज़ें। फिल्म का नाम चोरी चोरी। और आपको बताते चलें कि इस फिल्म का म्यूजिक दिया था शंकर जयकिशन ने और इस गाने को लिखा था लिरिसिस्ट शैलेंद्र ने। और आज शैलेंद्र जी की बर्थ एनिवर्सरी है। जाने माने लिरिसिस्ट जिन्होंने एक नहीं दो नहीं ढेर सारे खूबसूरत गाने लिखे हैं, आज ही के दिन जन्मे थे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और इसलिए हमारी आज की जोड़ी नंबर वन रहेगी, शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की जोड़ी, यानी कि वो गाने जो शैलेंद्र जी ने लिखे और जिनमें म्यूजिक दिया है शंकर जयकिशन ने। प्रोग्राम के अगले हिस्से में सुनवाऊंगी। और ये गाना सुनकर संध्या भावसर, जासू जी, महेंद्र बजारिया जी, मालती जी और हमारे विजय गुजरी जी का कहना है कि खूबसूरत गाना है। चलिए, आप सभी के नाम पर किया और अब समय आ गया है कि आप सभी के मैसेजेस पर भी एक नजर डाल ली जाए।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
0: तो चलिए प्रज्ञा, सबको गुड मॉर्निंग कहना चाह रही हैं कि हम आपके साथ हैं, थैंक यू साथ देने के लिए। इसके अलावा विजय जी, आपने आज भी हमारा साथ एक अच्छा सा विचार शेयर किया है। कहते हैं कि अपनी पहचान शब्दों से नहीं कर्मों से बनाओ, क्योंकि बोलने वाले बहुत मिलते हैं, कर दिखाने वाले कम होते हैं। क्या बात है, खूबसूरत विचार। और इसके साथ ही हम सब की ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। आज आपका भी हैप्पी वाला बर्थडे है। तो चलिए शंकर जयकिशन की जोड़ी के गाने आज आप ही के नाम पर करते हैं। आप हमारे बहुत प्यारे लिस्नर हैं और प्यार के साथ साथ देते हैं, सो थैंक यू। और एक बार फिर से जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। अगला गीत आपके लिए, और आपके साथ साथ हमारी आंटी जी सुन रही हैं अमिताभ बच्चन का गीत, सुनकर तो आपका दिन बन जाता है। थैंक यू साथ देने के लिए। बेल्जियम से प्रीति जी हमारे साथ हैं, क्रॉइडन से महेंद्र पटेल साथ दे रहे हैं, और ये है हरीश खत्री जी, कुमार शानू की आवाज़ सुनकर आपका दिन बन गया, खुश हो गए, क्या बात है। भरत गंगाराम जी धन्यवाद, दिव्या जी हैरो से, तोची जी वियाना से, अनिल सोनी जी, अर्जुन जी, मनीषा शाह थैंक यू कहते हैं। आपसे सुनने के लिए हमें पूरा वीक इंतज़ार करना पड़ता है। तो अब आपको बता दूं कि अगले वीक यानी कि कल तो है बैंक हॉलिडे मंडे, तो कल मैं आपके साथ होंगी, लेकिन उसके बाद फ्राइडे तक आपके साथ रहूंगी और सैटरडे संडे तो मेरा अपना शो होता है। तो आज से लेकर अगले संडे तक हम और आप साथ साथ ही होंगे, यानी कि 7 दिन से ज़्यादा। जी, तो ये बात मुझे आपको एक बतानी थी जो मैं बता चुकी हूँ। और अब हमारे साथ है गिरीश जी, इंदौर में हमें सुन रहे हैं, कहते हैं यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, लेकिन गिरीश जी हमारे यहाँ तो अब बरसात का सिलसिला शुरू हो चुका है और अब ये सिलसिला मुझे लगता है अगले समर आने तक ही थमेगा, क्योंकि यहाँ पर तो अक्सर ही बरसात होती रहती है। थैंक यू हंसा वोरा जी, मिसेस शेख मृदू जी एंड ऑफकोर्स हमारे शब्बीर जी, कहते हैं आपने भी 4 लाइनें लिखी हैं और आपने लिखा है कि आँखों में बसी तस्वीर हो तुम, दिल के हर दर्द की तकदीर हो तुम, पूछा जो हमने क्या हो तुम, बोली मेरी हर खुशी की लकीर हो तुम। क्या बात है, खूबसूरत शायरी आप हमेशा ही हमारे साथ शेयर करते हैं। चलिए हम भी आपको डेडिकेट करते हैं ये अगला खूबसूरत सा गाना।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: राजेश खन्ना की फिल्म से लिया था ये गाना, और इस गाने को डेडिकेट करते हैं हमारी मालती जी के नाम पर, जो बड़े प्यार के साथ प्रोग्राम को सुनती हैं। एंड थैंक यू गिरीशी इस मैसेज के लिए, दिल खुश हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुदेव गांजा, क्या बात है, आपने भी बहुत अच्छी सी बात लिखी है और मुझे भी बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि आपको मेरा साथ अच्छा लगता है और गाने पसंद आते हैं और साथ दे रहे हैं आप, सो और क्या चाहिए। थैंक यू जैस जी, थैंक यू वंदना गुटका, थैंक यू चंदू शाह जी एंड डॉक्टर माला, बहुत धन्यवाद। एंड ऑफ कोर्स वजाहत हमें सुन रहे हैं, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू टोरंटो से उल्लास जी एंड हमारे राजेश जी, सभी को रविवार की शुभकामनाएं भिजवा रहे हैं और काम के साथ साथ प्रोग्राम भी सुन रहे हैं, तो बस सुनते रहिए। अगला गीत आप ही के नाम पर करती हूं और आपके साथ साथ ये गीत जासू जी आपके नाम पर भी जाता है, एंड ऑफ कोर्स हमारी संध्या भाव सर। और जैसा कि मैंने हमको बताया कि आज शैलेंद्र अपनी हैप्पी वाली बर्थडे, यानी कि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, आज ही के दिन वो जन्मे थे, तो आज हमारी जोड़ी नंबर वन होगी शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी की जोड़ी, जिनके गाने सुनवाऊंगी। लेकिन इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इतने अच्छे लिरिसिस्ट हैं, तो एक दो गाने से काम नहीं चलेगा, इसलिए अगला गाना भी उसी कॉम्बिनेशन का आप सबके लिए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
3: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold, Greater London.

0: गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
1: कालीन भैया है वो किंग ऑफ मिर्जापुर।
0: पंकज त्रिपाठी एस कालीन भैया, अली फजल एस गुड्डू पंडित और मिर्जापुर के आइकॉनिक कैरेक्टर्स। जस्ट 5 days टू गो। मिर्जापुर द मूवी रिलीजिंग इन सिनेमाज September 4th।
2: मिर्जापुर में एक ही दरवाजा है यादव जी, दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
3: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
5: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
6: 3 days to go. UK something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
7: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
8: And its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
9: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal, too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
8: Conditions apply. See online for details.
10: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
11: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड। मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे।

0: जब से आप सबने सुना है कि आज जोड़ी नंबर वन में शैलेंद्र जी और जय शंकर शंकर जय किशन की जोड़ी है, तो आपके ढेरों मैसेजेस मिल चुके हैं और आप बहुत सारे गाने सजेस्ट भी कर रहे हैं बजाने के लिए। अब देखती हूँ कि आज के प्रोग्राम में कौन से गाने सुनवा पाती हूँ, क्योंकि उनके इस कॉम्बिनेशन के सुपरहिट गानों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो देखते हैं, कुछ गाने तो मैंने चूज़ किए हैं और उम्मीद है कि वो आपको शायद पसंद भी आएंगे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए and 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.9 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
4: Yeah, hey, Leica Gold.
3: Leica Gold.
5: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
6: लंदन जेज एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स बॉलीवुड लेजेंड लाइव इन लंदन, बॉलीवुड एक्टर आफ्ताब शिवदसानी, प्लेबैक सिंगर अमन त्रिखा और सोलफुल सिंगर मयूरी पटालिया लाइव हैरो में। Saturday, 3rd October, 7 p.m. Harrow Art Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Art Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: Two businesses.
8: Same town.
7: Same service.
8: One appears on page one of Google.
7: The other doesn't.
8: Guess which one gets the customer?
7: The truth is brutal.
8: The first page of Google gets the business.
7: Everyone else gets what's left.
8: So here's the real question.
7: When your customers search for what you sell, do they find you?
8: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
7: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.

0: Starfall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
1: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
2: Southall Travel, at all protected.
3: Dad, Dad, Dad!
4: What's wrong, beta?
3: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
4: I will run down to the money exchange now.
3: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
4: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
6: बीकानेर वाला परंपरा भी
7: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे टेस्टी स्नैक्स मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB कॉल 0779518100
8: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाएं फॉरन का फोन मिलाएं 0208839080 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन लंदन वालों ध्यान से सुन लो के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं जल्दी कीजिए ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी आज ही हमारे हैरो पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं
9: खाखरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक
10: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाखरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर
9: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स
11: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
12: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like our radio और like our gold, आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com
13: शर्मा लाइव ऑन लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन
14: मुझे कुछ कहना है
15: मुझे भी कुछ कहना है
14: मुझे कुछ कहना है

0: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप करके निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: जी हाँ, कालिया फिल्म से था ये गाना और उससे पहले आपने जो दाई फिल्म का गीत सुना और इन दोनों गीतों के साथ प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हो गया है। मैं हूँ ऋतु शर्मा और आप सुन रहे हैं लाइका रेडियो नेटवर्क और सभी सुनने वालों को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम। और इस आवर में आप सुनते हैं जोड़ी नंबर वन और आज की हमारी जोड़ी है शैलेंद्र और शंकर जय किशन की जोड़ी, क्योंकि आज शैलेंद्र जो कि जाने माने लिरिसिस्ट हैं आज के दिन बॉर्न हुए थे 30 अगस्त 1923 में, तो उनके गाने जरूर सुनवाऊंगी। लेकिन इस आवर में एक कंपटीशन भी है, तो अब मैं कंपटीशन की बात करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए कि आपको इस कंपटीशन में हम क्या देने वाले हैं और ये कंपटीशन क्या है। तो लाइका रेडियो नेटवर्क एब्रोक्स एवेंट्स के साथ मिलकर आपके लिए लाए हैं फहाद यफ पेइंग ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी एंड किशोर कुमार अकम्पनीड बाय मनीषा शर्मा, और ये शो होने जा रहा है संडे 6 सितंबर को फ्रॉम 5 PM एट हैरो आर्ट सेंटर हेच एंड पिनर। आपको क्या करना है, आपको वर्ड फहाद FAHAD लिख कर भेजना है और आपका अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और अपना ईमेल एड्रेस लिख कर भेजिए। और आपका अगर नाम शो के एंड में आता है तो आपको मिलेंगे 2 टिकट्स इस शो को सुनने जाने के लिए। लेकिन अगर आप जा सकते हैं तभी पार्टिसिपेट कीजिए, नहीं तो किसी और का मौका वेस्ट हो जाएगा। और अगर आप विनर नहीं बनते हैं तो भी फिकर नॉट, आप टिकट खरीद सकते हैं फ्रॉम हैरो आर्ट्स सेंटर की वेबसाइट से। ठीक है, तो जल्दी से भेजिए हमें लिखकर फहाद, साथ ही साथ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस। और हमारा नंबर तो आपको पता ही है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। भेजिए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर फटाफट।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो £1 आपको देगा 128.75 भारतीय रुपए, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस आल्सो अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
0: और अब शुरू करते हैं आज की जोड़ी नंबर वन का सिलसिला, सुनाते हैं आपको पहला गाना अब से बस थोड़ी सी देर में।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hello?
3: Mel, something huge has landed.
2: The UFOs, it's all over the news.
3: Better, the mini sale event. Hurry up and get down here.
2: I think that's why the aliens are here too.
3: I do now, gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale-event.
5: ये है लाइका गोल्ड,
6: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
7: Deirdre, look, it's the bottom lids this time, sliding across their car bonnet.
8: Leave them be, Philip. They just claim confident.
7: Claim confident?
8: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
7: Deirdre? Deirdre? Come back here.
9: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में था ये गाना, जिसे आपने सुना लाइका रेडियो नेटवर्क से, और आप सुन रहे हैं जोड़ी नंबर वन, जिसमें आपको मैं शैलेंद्र और शंकर जयकिशन की जोड़ी के गाने सुनवा रही हूँ।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और चलिए अगला गीत सुनवाने से पहले आपको मैं याद दिला दूं कि प्रोग्राम में कंपटीशन चल रहा है, और कंपटीशन में आपको क्या करना है हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। आपको लिखकर भेजना है फहाद, और साथ ही साथ अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल एड्रेस, और अगर आप जा सकते हैं तभी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कीजिए। और ये शो होने जा रहा है हेरो आर्ट सेंटर HN में, जिसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं फहाद यफ, जो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार को, और इस प्रोग्राम को लेकर आए हैं ईयरबॉक्स इवेंट्स, और लाइका रेडियो नेटवर्क इसके पार्टनर है, अकम्पनीड बाय मनीषा शर्मा। और अगर आपने टिकट बुक नहीं कराए हैं, कंपटीशन में नहीं विनर बनते हैं, तो आप टिकट्स भी परचेज कर सकते हैं फ्रॉम हेरो आर्ट सेंटर की वेबसाइट से जाके। कंपटीशन चल रहा है और देखते हैं कौन बनता है उसका विनर, लेकिन फिलहाल मैं आपको सुनवाने वाली हूँ वो आइकॉनिक गाना जो शैलेंद्र सिंह और शंकर जयकिशन के कॉम्बिनेशन का मुझे लगता है अब तक का सबसे बेस्ट गाना है।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: जीवन की सच्चाई से जुड़ा हुआ ये गाना शैलेंद्र जी ने क्या खूब लिखा है और शंकर जयकिशन ने क्या धुन बनाई है। अमर है ये गाना और इस गाने को सुनकर मैं तो थोड़ी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि गाना ही ऐसा है जो जीवन की सच्चाई को दर्शाता है। और आपको बता दें कि ऐसे गीतकार शैलेंद्र सिंह आज ही के दिन जन्मे थे 1923 में। और हिंदी सिनेमा के अगर कहा जाए तो सबसे महान और प्रतिभाशाली गीतकारों में से एक थे, जिन्होंने अपने सरल, सहज और दिल को छू लेने वाले गीतों से हिंदी सिनेमा और संगीत को एक नई पहचान दी। कुछ बातें उनके बारे में ज़रूर बताऊंगी। उनका असल नाम शंकर दास केसरी लाल था और इनका परिवार बंटवारे के बाद मथुरा आया और फिर मथुरा से सब लोग मुंबई आ गए। और मुंबई में शुरुआत में इन्होंने भारतीय रेलवे में एक मैकेनिक के रूप में काम शुरू किया, क्योंकि बंटवारे से पहले और बंटवारे के बाद लोगों अपना सब कुछ छोड़कर भारत वापस आए थे, तो उन्हें अपना रोजी रोटी चलाने के लिए कुछ तो करना था। मैकेनिक बन गए, लेकिन साथ ही साथ कविताएं लिखने का शौक था, कविताएं भी लिखते रहे, इप्टा से भी जुड़े। लेकिन जानते हैं राज कपूर से इनकी मुलाकात कैसे हुई? एक कवि सम्मेलन में राज कपूर को उनकी कविता, वो गाना है ना, जलते हैं तो जलने दो, आपने कभी सुनी होगी, सुनी और उन्हें इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने तुरंत ही, उस समय वो फिल्म बना रहे थे आग, उसके लिए शैलेंद्र जी से कहा कि क्यों ना आप मेरी फिल्म के लिए गीत लिखें। और शैलेंद्र ने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन पैसों की बहुत ज़रूरत थी और राज कपूर अच्छे पैसे दे रहे थे, तो शैलेंद्र ने हाँ कह दिया। और उसके बाद उन्होंने फिर बरसात की फिल्मों के, बरसात जो फिल्म थी उसके भी गीत लिखे, और उसके बाद तो आर के बैनर की जैसे बैकबोन बन गए थे शैलेंद्र गीतकार, शंकर जयकिशन म्यूजिक डायरेक्टर और मुकेश जी और राज कपूर की ऐसी अटूट टीम बनी जिसने दशकों तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। एक और बहुत ही खूबसूरत सा गीत सुनवाने वाली हूँ, क्योंकि इनके गाने तो बहुत सारे, और हमारे विजय जी कहते हैं कि आप एक दो गाने में शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी के साथ पूरा न्याय जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि उनके गाने बहुत सुंदर हैं। सच कहा आपने, इसीलिए एक और बहुत ही क्लासिक गीत मैंने चुना है जिसे मैं सुनाऊंगी आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Riti Sharma on Like a Gold. Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट। Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का नया एपिसोड आ गया है, जिसका टाइटल है द दिवाली स्टोरी शोकेस, और इसे होस्ट किया है राज बधन एंड खुश ने। आप लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट सुन सकते हैं आप स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। लाइका एक्स्ट्रा।

0: आज की हमारी जोड़ी नंबर वन का एक और आइकॉनिक गाना जिसे आपने सुना लाइका रेडियो नेटवर्क से, और आज शैलेंद्र सिंह लिरिसिस्ट की बर्थ एनिवर्सरी है। उन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं जो आज तक सभी को पूरे के पूरे मुंह जुबानी याद हैं, और ऐसे गीतों के लिए उन्होंने 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। फिल्म यहूदी के लिए, अनाड़ी के लिए, ब्रह्मचारी के लिए, और उनके लिखे गीत आज भी बिल्कुल अनमोल हैं। तो देखते हैं कि एक आध गाना शायद ब्लैक एंड वाइट क्लासिक में बजा पाऊँ तो ज़रूर बजाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल तो कंपटीशन चल रहा है और मुझे देखना है कि कौन बनता है आज के कंपटीशन का विनर। प्रोग्राम का आखिरी गाना अगर मुझे इजाज़त देता है तो मैं विनर का नाम उसके बाद अनाउंस करूँगी, और अगर मुझे समय नहीं मिला तो नेक्स्ट वाले आवर के 2 बैक टू बैक गीतों के बाद मैं विनर का नाम अनाउंस करूँगी। इसलिए रेडियो सेट से चिपके रहिए, कहीं आपका नाम मिस ना हो जाए।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो 1 pound आज आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.9 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: यस कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज में था ये गाना, और अब अगला गीत लता जी और यश दास की आवाज में हमें लेकर चलेगा न्यूज तक।
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: Biryani. 29th, 30th and 31st August. Special offers available on Disha products. Disha, Disha, taste the difference.
1: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
1: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
2: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
1: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
1: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
6: Dad, Dad, Dad!
7: What's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Ilford, ab asli Indian flavors ka maza lijiye.
9: परंपरा भी फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, एल्फोर्ड, IG26HA। कॉल 07555-506015।
10: Hi, this is Chitrangada Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
11: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Laika Radio Greater London.
12: Classics to make your weekends feel good. This is Ritu Sharma on Laika Gold.

0: क्या ब्यूटीफुल गाना है। दाग फिल्म से लिया था ये गाना, जो 1973 में आई थी, और उससे पहले श्रीदेवी और जॉली मुखर्जी की आवाजें आपने सुनी। यह है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर, और अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका स्वागत है इस शो में। मैं आपको बता दूं कि मैं हूं ऋतु शर्मा, 10 से 1 सैटरडे संडे आपका साथ देती हूं, और इस बार तो नेक्स्ट वीक भी हम और आप साथ रहेंगे रवि शर्मा जी के शो में। 10 से 1 मैं आपका साथ दूंगी, तो कल भी मिलेंगे। कल बैंक हॉलीडे मंडे है, तो क्या प्लानिंग्स है आपकी? आई एम श्योर कुछ खास ही आपने सोचा होगा, लेकिन फिलहाल तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे आज के थ्री वर्ड्स गेम का। लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज के कंपटीशन के विनर कौन बने हैं। तो जिन्होंने आज के कंपटीशन को जीता है उनका नाम है मनीषा। मनीषा, आप बनती हैं हमारे आज के कंपटीशन के विनर, और आपको मिलते हैं 2 टिकट्स उस शो के जिसे आपके लिए लेकर आ रहे हैं एब्रोक्स इवेंट्स, और जहां पर फहद यफ ट्रिब्यूट देने वाले हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार दा को, और अकम्पनीड बाय मनीषा शर्मा। वाह, मनीषा शर्मा शो को होस्ट करेंगी और मनीषा शाह देखने जाएंगी, क्या बात है। और ये शो होने जा रहा है संडे 6 सितंबर फ्रॉम 5 PM एट हैरो आर्ट सेंटर H&N विनर पिनर में। और अगर आपने कंपटीशन नहीं जीत पाए हैं और शो देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, टिकट्स आप परचेज कर सकते हैं हैरो आर्ट सेंटर की वेबसाइट पर जाकर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मनीषा वंस अगेन। और अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। ये गाना हमेशा की तरह आज भी मैंने एक बड़े ही पॉपुलर गीत से लिए हैं तीन वर्ड्स, और आपको बताना है गाना कौन सा है। पहला वर्ड है मीठी, दूसरा वर्ड है बादल, और तीसरा वर्ड है भीगी। किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ें हैं। 1974 में आई थी ये फिल्म, और इसमें RD बर्मन का म्यूजिक है। कौन सा है ये गाना, फिर से रिपीट करती हूँ। पहला वर्ड है मीठी, दूसरा है बादल, और तीसरा है भीगी। किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ें हैं। 1974 की फिल्म है, RD बर्मन का म्यूजिक है। कौन सा है ये गाना, अगर पता है तो अपना मैसेज भिजवाना हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 07444-232323. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: और एक बार फिर से याद दिला दे कि £1 के बदले में आज आपको 128.75 भारतीय रुपए मिलेंगे, लेकिन ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Like a Gold, 10:35 AM.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: बिल्कुल, ये थी लता जी और रफी साहब की आवाज। फिल्म का नाम जब जबक और इसमें म्यूजिक दिया था चित्रगुप्त ने। और आप जानते हैं कि चित्रगुप्त श्रीवास्तव ही है हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक। थ्री बर्ड्स गेम चल रहा है और बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है। इनफैक्ट आज किसी ने भी गलत जवाब नहीं दिया है, कमाल की बात है। तो जिन्होंने मुझे आंसर भिजवाया, समझ लीजिए आप सबके आंसर्स बिल्कुल सही हैं, लेकिन मैं आपके नाम भी बोलूंगी। बट फिलहाल शुरू करने वाली हूँ आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला।
1: ये है Like a Gold
0: और पहला गाना सुनवाएंगे आपको मुकेश जी की आवाज में।
1: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: ये गाना मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है और बहुत ही खूबसूरत लिरिक्स लिखे हैं इसके हसरत जयपुरी ने। लेकिन आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी ना, इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था शैलेंद्र ने, यस, जो कि लिरिसिस्ट शैलेंद्र हैं, उन्होंने इस फिल्म को बनाई थी। और इस फिल्म को उन्होंने एक बहुत ही जाने माने राइटर हैं फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी एक कहानी थी मारे गए गुलफाम, उस पर आधारित थी ये फिल्म और इन्होंने नाम दिया था उसे तीसरी कसम। राज कपूर वहीदा रहमान ने इस फिल्म में काम किया था और जब ये फिल्म बनी थी ना, बहुत ही मन से इस फिल्म को शैलेंद्र ने बनाया था, लेकिन शुरुआती दौर में लोगों ने इस फिल्म को पसंद नहीं किया। हालांकि आज तो ये फिल्म क्लासिक मानी जाती है, लेकिन शुरुआत में बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म असफल रही और इसके कारण शैलेंद्र जी को बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस और मानसिक तनाव, जिसे कहते हैं मेंटल टेंशन, झेलना पड़ा और बहुत ही छोटी सी उम्र में, सिर्फ 43 इयर्स की एज में उनका निधन भी हो गया, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और ये जो जोड़ी थी राज कपूर शंकर जयकिशन की, साथ में शैलेंद्र, इस जो ट्रेयो था उसमें एक जन चला गया और सभी बहुत दुखी हो गए। इतने बढ़िया लिरिसिस्ट छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए और ये फिल्म इन्होंने ही बनाई थी। आज इनकी बर्थ एनिवर्सरी है तो सोचा क्यों ना उनकी ही प्रोड्यूस की हुई फिल्म का एक गीत आपको सुनवाऊं।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: मालती जी कहती हैं कि मेरा भी ये बहुत फेवरेट गाना है। और सुरेश जी, यस, मुझे आपका मैसेज मिल गया है, आपसे गैंसल पर मुलाकात हुई थी और आप अपनी बेटियों के साथ आए थे और आपका मैसेज फिर से मिला है, आप हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा था उस दिन भी आपसे मिलकर और आज आपका मैसेज मिला है, तो खुशी है ये जानकर कि आप बिल्कुल ठीक ठाक है। और चलिए बढ़ जाते हैं आगे, एक और आज का ब्लैक एंड वाइट क्लासिक वाला गीत आपको सुनवा दूं, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं कि दिवाली स्टोरी जो स्टेज प्रोग्राम होने जा रहा है ओवो अरीना वैमली में ऑन 27 सितंबर संडे के दिन, उसके टिकट्स आपने अगर अभी तक नहीं बुक कराए हैं तो जल्दी से कीजिए, diwalistory.com पर जाकर आप उसके टिकट्स बुक करा सकते हैं। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है इस प्रोग्राम के लाइक अ रेडियो नेटवर्क।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma. Like a gold. This is Ritu Sharma. Like a
3: gold. This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: पहचान लिया है, क्या बात है, आप सबके लिए तालियां। और जिन्होंने पहचाना है उनके नाम है, सबसे पहले प्रज्ञा आपने जवाब दिया है, फिर मनीषा शाह, चंदू शाह, माया जी वाटफुट से, उल्लास टोरंटो से, विनोद जी, नरेन पटेल, मालती जी कुकी, फरीद हुसैन जी कराची से, सुधा मकवाना तोची जी, दिव्या हैरो से, नीलकंठ जी वॉकिंगम से, अमर सुरेश पटेल प्रीति बेल्जियम से, दामिनी बेन हैरो से, किरण जी, जासू मिस्त्री हाजरा जी, संध्या भावसर, दिनेश पोपट जी, गिरीश जी इंदौर से, उषा खोड़ा एंड ऑफ कोर्स निर्मला जी। क्या बात है, सबके जवाब जब सही आ ही गए तो मैं कौन होती हूँ इस गाने को न बजाने वाली बजाती हूँ। ये गाना बड़ा ही प्यारा है। अब से बस थोड़ी देर में लता जी किशोरदार की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है फिल्म अजनबी से, भीगी भीगी रातों में, अरे नहीं, सुनवाती हूँ थोड़ी देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: अगर हॉलीडे जाने की सोच रहे हैं तो साउथहॉल ट्रैवल के पास फोन कीजिए, उन्हें 02085748410 पर कॉल कीजिए और दुबई के लिए अच्छी डील चल रही है उसका फायदा उठाइए। साउथहॉल ट्रैवल इज एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
2: ये है Leica Gold.
3: Leica Gold.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
7: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive TV partner Star Plus and exclusive radio partner Leica Radio Network.
8: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
9: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन। इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल। आप आइए और सबको लाइए।
10: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાન નું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન। આવો અને જુઓ જાપાન નું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે। સીટ્સ લિમિટેડ છે એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો। મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર, જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે।
11: हॉन्स्लो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
12: बीकानेर वाला
13: परंपरा भी,
12: स्वाद भी। बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउस लो TW3 1QT। कॉल करे 07487-687-885।

0: सॉफ्ट क्लॉस अब है स्टॉप क्लॉस।
1: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
2: अपना बनाया तेनू,
1: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फर्ड।
3: Hi, this is Arbaaz Khan.
4: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
6: Tasty track of the hour, brought to you by Coca Noodles.

0: बहुत ही खूबसूरत गाना फिल्म अजनबी से, और ये था हमारे आज के ब्लैक एंड व्हाइट, आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना। और भावना कहती है कि ये तो मेरा फेवरेट गाना है, मैं कैसे नहीं पहचानी। तो कोई बात नहीं भावना, हो जाता है कभी कभी। लेकिन फिलहाल तो समय आ गया है एक और गीत सुनवाने का, जो होगा इस शो का आखिरी गाना। लेकिन उससे पहले
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 129 भारतीय रुपए, 375 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.92 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold.
0: बिल्कुल, यह है लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर अब तक आप मुझे यानी ऋतु शर्मा को सुन रहे थे। लेकिन अब ऋतु शर्मा का समय आ गया है कि मैं आपसे बाय बाय कह दूं। थैंक यू सो मच सुबह से लेकर अब तक मेरा साथ देने के लिए और ढेर सारे मैसेजेस भिजवाने के लिए। और मेरे बाद इस शो में आपका साथ देंगे अनुराग लाइका गोल्ड पर, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर आपका साथ देंगे जय जाबी, और लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर आपके साथ होंगी आनंदी शाह। लेकिन कल बैंक हॉलीडे मंडे हमारी और आपकी होगी फिर से मुलाकात। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और बस जब भी समय मिले हमें सुनते रहिए। और हाँ, इस शो को अगर आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को दोबारा सुन सकते हैं। अभी हाल फिलहाल नहीं, उसमें 3-4 घंटे लगेंगे, 3-4 घंटे बाद आप इस शो को कभी भी अपने मनपसंद टाइम पर दोबारा सुन सकते हैं। लेकिन कल ज़रूर साथ दीजिए, कल बैंक हॉलीडे साथ मनाएंगे और मैं होंगी आपके साथ रवि शर्मा जी के शो में। ये होगा लाइका रेडियो मिडलैंड्स और लाइका गोल्ड पर। सो कल तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।
4: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4-7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
3: ये है
5: लाइका गोल्ड,
6: आपका अपना उत्सव प्लस, अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
7: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।

0: ऐसा समाना होता कुछ भी यहाँ ना होता मेरे हमरा ही जो तुम ना होते। लता जी की आवाज़ में ये गाना सदाबहार उनके फैंस के लिए किसी तोहफे से कम नहीं। आड़ी बर्मन साहब का कमाल का संगीत। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन फिल्म के हाईलाइट की अगर बात करें जाए तो बड़ा ही सधा हुआ शानदार अभिनय। फिल्म की असली कमान रेखा जी और राखी गुलजार जी के हाथों में थी। दोनों कमाल की अभिनेत्रियां के जब बीच के सीन्स फिल्माए जा रहे थे तो बड़ी सतर्कता रखी जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और इन दोनों के सीन जब सिल्वर स्क्रीन पर हम लोगों ने देखे, उनके फैंस ने देखे, तो बड़ा ही सधा हुआ, बड़ा ही कमाल का अभिनय। और दूसरी तरफ यंगस्टर संजू बाबा यानी कि संजय दत्त साहब और अनीता जी, अनीता राज इस फिल्म में नजर आए थे। कमाल की फिल्म, कमाल के इस फिल्म के गाने आज इस फिल्म के लोग दीवाने हैं। और ख़ासतौर पर संजू बाबा के इनिशियल डेज़ की ये फिल्म, और जहाँ पर बहुत कुछ तो नहीं करने को मिलता था, लेकिन इन दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच में बड़ा ही कमाल का परफॉर्मेंस। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के संदेशों के लिए, मैसेजेस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रितु शर्मा जी का इससे पहले जो थी हॉट सीट पर, आप सुन रहे हैं सुपर संडे वाली महफिल जहाँ पर मिल रहा है आपको सुरों का डबल डोज। सुनते रहें, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे आज का गोल्डन वर्ड।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीज एंड 75 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Like a gold. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410। दैट्स 0208574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: श्री राम मंदिर किंग स्ट्रीट साउथ हॉल इनवाइट यू टू द श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के पावन सानिध्य में 30 अगस्त रविवार को 26वीं शोभा यात्रा सुबह 11:30 बजे से श्री राम मंदिर से आरंभ होगी, जिसमें पूजन, दर्शन, भजन, कीर्तन और प्रीति भोजन। इसके अतिरिक्त 4 सितम्बर को शाम 8 बजे से भव्य सेलिब्रेशन एट द श्री राम टेम्पल 22 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल। आप आइए और सबको लाइए।
6: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
6: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
6: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
6: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA. NHRA and regulated by the FCA and PRA.
8: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम.
11: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सेप्टेम्बर.
12: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है.
11: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट.
13: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आवर रेडियो नेटवर्क.
14: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
16: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
17: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali on Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham, a memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
18: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
19: मीनार ज्वेलर्स. अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए minarjewelers.com. कॉल 02087677627.
20: कैरेटिनो बेटर घी, द हेल्थियर लो प्राइस कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर घी ऑल्टरनेटिव. कैरेटिनो बेटर घी अवेलेबल इन टेस्कोस, एस्डा, मॉरिसंस एंड लोकल ग्रोसरी stores. Caratino Better Ghee.
21: She's back.
22: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने. इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर.
21: Catch Anisa Nasir as she returns on the Big Show from Bank Holiday Monday at 7 PM on Leica Gold and Leica Radio, Greater Manchester. Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Lata ji aur Mahendra Kapoor sahab ki awaaz, film ka naam Wo Kaun Thi aur is film mein kaun thi, hum bata rahe hain aapko. इस फिल्म में मनोज कुमार साहब यानी कि भारत कुमार साहब और उनके साथ में इस गाने में फीचर हुई थी पिया तू अब तो आ जा कहने वाली, जी हाँ हेलन जी. और अगला गाना हम आपको सुना रहे हैं मुकेश साहब और लता जी की आवाज में. फिल्म का नाम है संगम, क्योंकि हर दिल जो प्यार करेगा.

0: संगम फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत। अब अगले गीत के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि पंचम दा का जादू इस गीत में पूरी तरह से बरकरार है। आज भी ये गाना उतना ही शानदार है। आप जितने भी गुस्से में बैठे हो, कितना भी मूड खराब हो, लेकिन अगर आपने 4 मिनट 55 सेकंड इस गीत को सुन लिया, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोमांटिक होने से नहीं रोक पाएगी। सुनते हैं अगला गीत।
1: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: Full volume ke saath.

0: जाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बस इस गाने का हैंगओवर थोड़ी देर में उतर जाएगा और फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.

0: लता जी किशोरदा की आवाज में प्रेम पुजारी फिल्म का ये गीत, और अगले गाने के बाद, अगले नगमे के बाद हम बताएंगे आपको, आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड। तो दिमाग की बत्ती जलाने के लिए हो जाइए तैयार।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.19 पाकिस्तानी रुपीस 375.71, श्रीलंकन रुपीस 443.9, बांग्लादेशी टका 166.56, अफगान अफगानी 87.51 एंड 1 US डॉलर 1.35.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £105.92 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। रवि साहब का खूबसूरत संगीत, दत्त साहब और अशोक कुमार साहब, नंदा जी और तनुजा जी इस फिल्म में मुख्य किरदारों में नजर आए थे। लेकिन असली मुद्दे की बात यह है, जहां आपको जलानी है अपने दिमाग की बत्ती, आप बताएं और हम सुनाए वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है। बिल्कुल बहुत सीधा साधा सा, सामने। आज का गोल्डन वर्ड है सामने। कहते हैं ना कि सामने से हटो यार, वो वाला सामने, स्पेसिफिक करना पड़ रहा है। सुनते रहें और अपने फरमाइश के पिटारे से सामने वाले गाने यहां तक पहुंचाएं।
1: ये है लाइका गोल्ड। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
2: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
3: Four beers, please, garçon!
2: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
4: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
7: Dubai is coming to London.
8: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
7: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
8: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
7: Hurry and register now
8: at nknpropertyexpo.com.
7: Your next investment could begin here.
8: Official Radio पाना लाइका रेडियो।
9: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
10: Dad, Dad, Dad!
11: What's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
11: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
11: Oi, bale, bale. I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
10: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839080 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering, Ragasan.
12: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
14: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: sonatours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of August and get up to 400 off. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
17: On Rag with Golden Rag.

0: मुन्ना भाई, मोहम्मद अजीज और सारिका कपूर जी की आवाज में 20 साल बाद फिल्म का ये गाना अमित साहब ने हम तक पहुंचाया है और नजर के सामने जिगर के पास आज की फिल्म का ये गाना जो पहला हमने आपको सुनाया बैक टू बैक गानों में, इस गाने को हम तक पहुंचाया है प्रकाश जी, सुमन जी और अमित साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है, बहुत सारे नगमे सामने से हमारे पास आ चुके हैं क्योंकि आज का गोल्डन वर्ड जो है सामने, इसलिए अगला गीत आपको बहुत ही प्यार भरा सुनाने वाला हूँ। और ये गीत गाया है लता जी और रफी साहब ने, बड़ा ही प्यारा, सामने से रिलेटेड ये गाना हम तक पहुंचाया है किसने, थोड़ी देर में बताते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में आप पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128 रुपीस एंड 75 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
5: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danu Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
11: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
12: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी दी जर्नी ऑफ राम।
13: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th of September।
14: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
13: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉट।
8: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
15: Dad,
16: what's wrong, beta?
15: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
16: I will run down to the money exchange now.
15: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
16: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
17: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
18: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
19: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
20: It's December. Thand ko bolo, goodbye.
21: Join Maharaja Tours on a 14-night Caribbean cruise departing 6 December with direct Virgin flights from Heathrow to Barbados. Khoobsurat beaches, sunshine or 8 amazing Caribbean islands. Aapka intezaar. Prices from just £1,499 per person. Twin share. Seats limited hai, to aaj hi book kijiye. Visit maharajatours.co.uk or call 07956-154-846.
22: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
23: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
24: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: देवानंद और नूतन स्टारर एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने. लता जी और रफी साहब ने क्या खूबसूरती के साथ इस गाने को निभाया है. फिल्म का नाम तेरे घर के सामने. एसडी बर्मन साहब का खूबसूरत संगीत और ये गीत हम तक पहुंचाया मीना शाह जी, संतोष जी और प्रफुल्ल पटेल साहब ने. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: खिड़कियों से नजर हटाइए। किशोरदा की आवाज में पड़ोसन फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, और इस बार भी संगीत था पंचमदा का, आड़ी बर्मन साहब का, और ये गीत झोली भर कर हम तक पहुंचाया। बहुत सारे लोगों ने जल्दी से लेते हैं नाम, सालीग्राम, ऋषि राज जी, उलाज जी, निर्मला, रंजना कुकाड़िया, संतोष जी, नौशीन खान, जस्सी जी, हंसा बोरा जी, ज्योति, गिरीश शाह, शेखर भाई, शारदा जी, अमर जी, टोची पनेशर एंड संध्या भावसर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गीत को इस प्रोग्राम में शामिल कराने के लिए। सामने से
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact कीजिए Southall Travel को, नंबर है 0208574 8410. Southall Travel is a toll protected.
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Gold. Leica Extra Podcast Update.
0: Leica Extra Podcast Update episode number 31. Title hai is baar ka The Diwali Story Showcase. Hosted by Raj Badan and Khush. Leica Extra Podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: ये है
4: Leica Gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208782883 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: Croydon.

0: 29th, 30th and 31st August. Special offers available on Disha products. Disha, Disha, taste the difference.
1: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: दुबई इज कमिंग टू लंदन.
1: दिस 5th एंड 6th ऑफ सितंबर, स्टेप इनटू द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो by NKN Media.
3: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
1: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
3: Hurry and register now
1: at nknpropertyexpo.com.
3: Your next investment could begin here.
1: Official radio partner, Leica Radio.
4: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
5: बीकानेर वाला परंपरा भी,
6: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA. कॉल 07555-0615.
7: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
8: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive TV partner, Star Plus, and exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: 3 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
10: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
11: मैं हूँ अनीसा नासिर, लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में. मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10

0: आशा था रफी साहब की आवाज में खजांची फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हम तक पहुंचाया है राजेंद्र सिंह काला साहब और पुष्पा जी ने बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाई मोबाइल ऐप सेंड मनी टू इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन
0: लेमफाई के थ्रू इंडियन करेंसी में 1 पाउंड के बदले आपको मिल रहा है 129.27 पाकिस्तानी रुपीस 375.78 श्रीलंकन रुपीस 443.92 बांग्लादेशी टका 166.61 एंड 1 यूएस डॉलर 1.35
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Absolutely.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £105.92 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.

0: रवि साहब लता जी की आवाज में जन्म जन्म के फेरे विंटेज गोल्ड वाला ये सॉन्ग हमने आपको सुनाया है और ये गीत हम तक पहुंचा है वत्सला जी और रमेश जी ने। अगला गीत आ रहा है तू मेरे सामने, रवि साहब की एक बार फिर से आवाज, फिल्म का नाम सुहागन और ये गीत हम तक पहुंचाया है फरीदा गुलाम अली जी और अफजल साहब ने। अगले घंटे के लिए हो जाइए तैयार, अब जलेगी दिल की बत्ती और हम आपको बताएंगे आज के गोल्डन रॉक के 3 ऑप्शंस। तैयार रहिए सुनने के लिए।
1: On Rock with Golden Rock.

0: मैंने पूछा चांद से, रफी से आपकी आवाज, अब्दुल्ला फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, पंचम दा ने इस फिल्म का दिया था संगीत। चलिए अब मौका आ गया है दिल की बत्ती जलाने का। जी हाँ, और आप सबको पहले हम कायदे प्लस कानून बताते हैं। गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस बताने से पहले, तीन ऑप्शंस होंगे सॉन्ग के, जिनमें से एक ऑप्शन आपको सुनना होगा, चुनना होगा, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह आज का भी बनेगा गोल्डन राग। इसलिए भारी मतों से अपने गीत को, अपने गाने को, अपने नगमे को विजयी बनाएं। पेश आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, धर्म बाजी की ये फिल्म, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। ऑप्शन बी है, जीत ही लेंगे बाजी, फिल्म का नाम है शोला और शबनम, पुरानी वाली शोला और शबनम, गोविंदा वाली नहीं। और ऑप्शन सी है, घर तुम भुला ना दोगे, फिल्म का नाम है यकीन। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, मैं कहीं कवि ना बन जाऊँ, फिल्म का नाम प्यार ही प्यार। ऑप्शन बी, जीत ही लेंगे बाजी, फिल्म का नाम शोला और शबनम। और ऑप्शन सी, घर तुम भुला ना दोगे, फिल्म का नाम यकीन। यकीन मानिए, वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं शुरू, ओपन, स्टार्ट, इसलिए अपने अपने वोट स्टार्ट कर दीजिए कास्ट करना। अगला गीत हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी की कंपोज किया हुआ फिल्म, कंपोज किया हुए गाने, भारत फिल्म से, सुनते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 128.75 पैसे। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आने वाली फिल्म का नाम भारत नहीं, भारत, माफ कीजिएगा, रवि साहब और मन्ना डे की आवाज में।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: ये है
3: लाइका गोल्ड,
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: Search is changing.
6: Customers aren't just using Google anymore.
5: They're asking AI.
6: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
5: One business, one recommendation.
6: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
5: Will your business be the answer?
6: Or the one that got left behind?
5: The future of search has already started.
6: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
5: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
8: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
8: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
8: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
8: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
9: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
10: London, Jazz Entertainment presents Bollywood legend live in London. Bollywood actor Aftab Shiv Dasani. Playback singer Aman Trikha. And soulful singer Mayuri Patalia live Harrow. Saturday, 3rd October, 7 PM, Harrow Arts Center. Tickets abhi book kijiye Harrow Arts Center box office se. More information ke liye call 0777-161-5800. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
11: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
12: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
13: Dubai is the place.
12: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
14: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
15: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
16: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
17: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. Ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
18: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of August and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
19: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
20: Like a Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Like a Gold aur online suno likeagold.com pe.
21: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Like a Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: अरे देखो फिर जूता मगर एक बार तो छूने जो यही है गुजारिश तेल मारे।
1: रवि साहब मन्नाडे की आवाज में बारात फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक चित्रगुप्त श्रीवास्तव जी की कंपोज किए हुए गाने। और भाई आज के ऑप्शंस बड़े ही डिफिकल्ट हैं, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि सबको बड़े बड़े वोट्स मिल रहे हैं लेकिन हमें जिताना तो एक ही को है ना भाई। फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शंस। ऑप्शन ए मैं कहीं कभी ना बन जाऊँ, फिल्म का नाम प्यार ही प्यार। ऑप्शन बी जीत ही लेंगे बाजी, फिल्म का नाम शोला और शबनम। ऑप्शन सी घर तुम भुला ना दोगे, फिल्म का नाम यकीन। वोटिंग लाइन्स ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
2: ये है लाइका गोल्ड फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
3: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट डेरीवैली.net।

0: बात तो कमाल की, किशोर दा की आवाज में चलती का नाम गाड़ी। और ये सुपर संडे वाली महफिल भी चलती रहेगी, ब्रेक के बाद मिल रहे हैं, लेकिन आखिरी मौका है, इसके बाद बंद हो जाएंगी आज के लिए वोटिंग लाइन।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Season finale catch up. You know what's needed. Pop to Co-op. Co-op members get 2 stone baked pizzas and a tub of Ben and Jerry's for a fiver. Co-op, owned by you, right by you.
3: Ends 8th of September. Selected products subject to availability. Co-op group membership required. £1 joining fee. Full terms at co-op.co.uk/summer.
4: Yeah, like a gold.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com। Croydon!

0: 29th, 30th and 31st August. Special offers available on Disha products. Disha, Disha, taste the difference.
1: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Da New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Da New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: पल भर के लिए
3: किशोर कुमार की मस्ती और मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज इब्रोक्स इवेंट्स प्रेजेंट्स द आइकॉनिक ड्यूओ रफी एंड किशोर फीचरिंग फहद यफ अकॉम्पनीड बाय सेवन पीस बैंड एंड मनीषा शर्मा गोल्डन एरा के एवरग्रीन गानों को रिलिव कीजिए संडे 6 सितंबर 5 PM एट हेरो आर्ट सेंटर टिकट स्टार्ट फ्रॉम जस्ट £25 बुक टिकट्स एट heroartcenter.com बॉक्स ऑफिस का नंबर है 0203-773-7161
4: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइक Radio Network.
5: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
6: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
5: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
7: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale. Scottish Highlands. Snowdonia ke afsanvi लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
8: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203-773-6333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
9: हॉन्स्लो अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास
10: बीकानेर वाला परंपरा भी
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे राज कचौरी मिठाई और बहुत कुछ आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो TW31QT कॉल करे 07487-687-885
12: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
13: Don't miss out. Call 0208-150-2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
14: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
15: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
14: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
15: Rich, authentic taste every single time.
14: Royal Chai, brewed for business.
15: Email now. info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
16: 3 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
17: Caratino Better Ghee, the healthier, low-price, cholesterol-free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
18: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. The Leica Radio Network. The perfect soundtrack for a British summer heat.

0: ओके साहब, लता जी की आवाज में पारस फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत, और इसी के साथ बंद हो गई हैं अब आज के लिए वोटिंग लाइंस, और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। बड़े ही कश्मकश के साथ हमने इस गाने को रखा इस पोजीशन पर आज के गोल्डन राग की जगह पर, क्योंकि बहुत ही कड़ा मुकाबला था, यकीन मानिए। सुनते रहे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 129.19 पाकिस्तानी रुपीस 375.69, श्रीलंकन रुपीस 443.97, बांग्लादेशी टका 166.56, अफगान अफगानी 87.41 एंड 1 US डॉलर 1.35.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: हम तुम जुदा ना होंगे, यकीन फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आज बना है गोल्डन राग। इस गलत फहमी में मत रहिए क्योंकि आज फिर से टाई हुआ है और बड़ा कड़ा मुकाबला। मैं बोलता रहा हूँ आपको पहले से ही कि दो सॉन्ग्स जिनको लेकर आप लोगों ने अपना दिल का प्यार उड़ेला है, और यकीन का गाना तो वाकई में बड़ा खूबसूरत है और एक और गाना हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले हम इस गाने को जिसने जिसने वोट दिया है उनका नाम लेते हैं। महेंद्र पटेल साहब, हासुमती जी, मिसेस इकबाल बेगम, सालिग्राम जी, हना जी, सूर्यकांत पटेल, मिसेस सुदेश टेकेयर, रंजना कुकाड़िया, करसन पिंडोरिया, प्रीति, सुमित एंड एच। कौन वाला एच? हीरो हीरोइन पता नहीं कौन है, लेकिन इन्होंने अपना नाम एच बताया है। और दूसरी लिस्ट का नाम पढ़ते हैं। वत्सला जी, किरण जी, टोची बनेश्वर, भारती जी, शेखर जी, रंजना सिंह, अयूब चौहान, दिव्या जी, रानी सुनाहे, प्रीति जी, सालिम एंड रानू पटेल। आपका आप लोगों ने भी जिस गाने को वोट दिया है वो गाना है जीत ही लेंगे बाजी। शोला और शबनम का ये गीत है, दोनों को गीत को लेकर हुआ है आज टाई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। नेक्स्ट आ रही सरता जी, खुश रहें, मस्त रहें और सुनते रहें हमेशा की तरह लाइका नेटवर्क।
1: दिस इज लाइका गोल्ड।
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाए तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
4: साउथ हॉल ट्रेवल, ऑटो प्रोटेक्टेड।
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923-227274। बुक योर टेबल टुडे। लंदन वालों ध्यान से सुन लो, के फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं।
8: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
9: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर। बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
10: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
11: Dreaming of paradise?
12: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
13: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
12: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923-883-100. That's 01923-883-100.
14: Festival at All Protected.
15: The wait is finally over.
16: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
15: Mirzapur is coming to the big screen.
17: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
15: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
18: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
15: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 5 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
19: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. Dusra koi nahi khulega.
20: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
21: From breathtaking wedding jewellery to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewellers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewellers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
22: Hi, this is Chitranidhar Singh. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London, themselves, presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the MTM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
23: Sarita Sabharwal with Golden Memories. This is Like a Gold.
24: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Like a Gold.

0: आशा तय की आवाज में खूबसूरत फिल्म का ये खूबसूरत संगीत। आर डी बर्मन साहब ने इस फिल्म का दिया था संगीत। और इस फिल्म में रेखा जी का ये चुलबुला सा किरदार, डबल चोटियां, दो चोटी करके जो पूरी फिल्म में उन्होंने समा बांधा था अपनी चुलबुली अदाओं से, उसके क्या कहने। और इस गाने के ख़त्म होने से पहले मुझे बहुत तेज़ी से हंसी आ रही थी शेखर साहब के एक मैसेज को पढ़ने के बाद, लेकिन वो मैसेज क्या है, वो मजाक क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। थोड़ी देर में सरिता जी आ रही हैं, लेकिन उनके आने से पहले मैं आपको एक और गाना सुनाता हूँ। अब क्या है थीम, क्या करना है आपको और क्या मुझे बूझना है, आपको बुझाना है, ये सब सरिता जी के कंधों पर। थोड़ी देर बिना सरिता जी अनुराग के साथ वक्त बिताएं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले आपको मिल रहा है इंडियन करेंसी में 128 रुपीज एंड 75 पैसे। याद रखें, अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर करें।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज सरिता सबरवाल on Like a Gold. Like a
2: Gold. Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
3: Deirdre, look, it's the bottom Liz this time, sliding across their car bonnet.
4: Leave them be, Philip. They just claim confident.
3: Claim confident?
4: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
3: Deirdre? Deirdre? Come back here.
5: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident. Croydon.

0: Veg Biryani, 29th, 30th and 31st August. Special offers available on Disha products. Disha, Disha, taste the difference.
1: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
3: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
4: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
3: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
5: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
6: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
7: Get ready, UK. Snill Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
8: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
7: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
7: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है।
10: बीकानेर वाला परंपरा भी, स्वाद भी।
11: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07985 181 001.
12: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
13: Conditions apply. See online for details.
14: She's back.
15: साथ देने का दिलाया था भरोसा तूने और फिर छोड़ दिया मुझको अकेला तूने। इन तमाम सवालात के जवाब के साथ अनीसा नासिर विल बी वेरी मच हासिर।
16: कैच अनीसा नासिर एज शी रिटर्न्स ऑन द बिग शो फ्रॉम बैंक हॉलिडे मंडे एट 7 PM ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर। Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
17: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गुड आफ्टरनून, अब आपकी सेवा में हाजिर है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। आज फिर ट्रेन्स ने मुझे धोखा दिया और मैं लेट हुई, बस माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। और अनुराग का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने दो प्यारे प्यारे गीत आप तक पहुँचाए, दो भी नहीं बल्कि तीसरा गीत भी उन्हीं की चॉइस का था। तो मैं आपसे जान लूँ ज़रा कैसे मिजाज हैं आपके, उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय करें, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शान से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते, महकते और थिरकते हुए ये गीत चुन चुन कर लाई है सरिता आप ही के लिए, और इस उम्मीद पर कि आप ज़रूर इन गीतों को पसंद भी करेंगे। राइट भी, आज के प्रोग्राम का आगाज़ जिस गीत के साथ हुआ, उस फिल्म का नाम था मिस्टर बेचारा। मिस्टर बेचारा आपने देखी ये फिल्म? अगर देखी है तो आपको पता होगा कि इस फिल्म में किसने काम किया था और कितनी खूबसूरत फिल्म थी। ये फिल्म आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी, इसलिए मैंने आज के प्रोग्राम को शुरू इसी गीत से करना था, लेकिन क्या करूँ मैं लेट होगी। पर मैंने बता दिया था अनुराग को कि पहला गीत आप ये वाला लगा दीजिएगा, तो उन्होंने मेरा काम आसान किया एंड आप तक ये गीत पहुंचा दिया। ये गीत मिस्टर बेचारा से थी जो 30th of August 1996 में रिलीज़ हुई थी। अनिल कपूर और श्रीदेवी ने इस फिल्म में काम किया था एंड के भाग्य राजा ने इसे डायरेक्ट किया था। आनंद मिलन का था संगीत। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। और बाकी जो गीत सुने उनमें फिर एक टाइटल आ गया और उस टाइटल पर आपने गीत सुने। सुन, यस सुन इज़ द वर्ड। सुन पर आप सारे गीत सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को पसंद भी ज़रूर करेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत प्यारा सा गीत है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। शेखर जी, मैं अभी आपकी शामत लेती हूँ। आप कहते हैं कि लेडीज़ बहुत टाइम लगाती हैं मेकअप करने में, इसलिए लेट हो गई सरिता हैं। कहते हैं लेडीज़ का मेकअप ख़त्म नहीं होता, यस्टरडे एंड टुडे अगेन। मेम साहिबा ने आपको लेट करा दिया, होप पे ऑफ वाली ख्याल करेंगे। ओके एंड अदरवाइज राज जी हैं ना। वाह शेखर जी, थैंक यू सो मच। आप यह मर्द है ना, इसलिए मर्द का साथ देंगे। आपको क्या पता कि सरिता कितनी जल्दी तैयार होती है। अगर किसी दिन कंपटीशन भी हो जाए ना 10 लेडीज़ के साथ, तो सरिता सबसे पहले तैयार होगी। ओके, ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप में टाइम लगाती हूँ। अब क्या करूँ, ईलिंग ब्रॉडवे गई कल तो मुझे बड़े मज़े से कार पार्किंग की जगह मिल गई, लेकिन आज जब मैं गई मे बी जो कार्निवल हो रहा है नॉटिंग हिल में उसकी वजह से बहुत से लोगों ने वहाँ कार्स पार्क की हुई थी, तो तकरीबन पौना मील दूर मुझे कार पार्किंग की जगह मिली। वहाँ से पैदल ईलिंग ब्रॉडवे गई, फिर वहाँ वाइट चैपल पर आकर पता नहीं ट्रेन को क्या हुआ, रुक गई बीच में और वहाँ पर 5-10 मिनट वेस्ट कर दिए, तो इस वजह से मैं 15 मिनट लेट हो गई। आई एम सॉरी।
0: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।
2: किशोर दा एंड लता जी की आवाज़ें, एक खूबसूरत सी नोक चोक, आइए प्यार से सुनते हैं।
3: सुनो
4: कहो,
3: कहा
4: सुना

0: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: आपकी कसम फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, जी ओम प्रकाश साहब ने बनाया था। इस फिल्म को राजेश खन्ना, मुमताज़ और संजीव कुमार ने इस फिल्म में काम किया था। राहुल देव वर्मन साहब ने कंपोज किए थे गाने, आनंद बख्शी साहब ने लिखा था ये प्यारा सा गीत। और इसी फिल्म का जय जय शिव शंकर वो सेकेंड टॉप मोस्ट सॉन्ग इन बिनाका गीतमाला एनुअल 1974 में, एंड करवटे बदलते रहे वॉज लिस्टेड नंबर 17 इन बिनाका गीतमाला 1974 में। बहुत फेमस हुए थे इस फिल्म के गाने। आपने फिल्म नहीं देखी तो एक दफ़ा तो बनता है कि आप इस फिल्म को ज़रूर देखें। बहुत प्यारी स्टोरी, बहुत प्यारी एक्टिंग सभी एक्टर्स की। और अवार्ड्स का मुझे याद नहीं कि इस फिल्म को कोई अवार्ड मिला था या नहीं, लेकिन फिल्म बहुत खूबसूरत थी। और अब ज़रा ये काम भी कर लें, दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाय NKN मीडिया इज़ बैक 5th and 6th, यानी कि कमिंग सैटरडे एंड संडे एट लंदन हिल्टन पार्क लेन, फीचरिंग सेलिब्रिटी गेस्ट लाइक अरबाज खान, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रगंधा सिंह एंड नरगिस फाकरी। एंड फ्री एंट्री होगी, रजिस्टर करना होगा आपको अपना नाम nknpropertyexpo.com पर जाकर। इस NKN प्रॉपर्टी एक्सपो इट्स वन वर्ड .com। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर कौन है? लाइका रेडियो।
2: सरिता सबरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स।
1: अनदर ब्यूटीफुल सॉन्ग हमारे आज के थीम पर, लता मंगेशकर एंड महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ें। फिल्म का नाम था नाइट इन लंदन, 1967 में आई थी ये फिल्म। पहचान लिया आपने कौन सा गीत है? नहीं, अरे भाई ये वाला।

0: अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
1: भाई किसी को प्यार का एहसास दिलाना, उनको यकीन दिलाना कितना मुश्किल काम है, आपने सुन लिया। बहुत प्यारा गीत था, वन ऑफ माय फेवरेट्स टू। थैंक यू सो मच, आपके मैसेजेस मुझे बराबर मिल रहे हैं। इसी तरह से आने दे आने दे आने दे, और लिखते रहें, अच्छी अच्छी बातें आप लिखकर भेज रहे हैं। मुझे हंसी भी आती है और खुशी भी होती है कि आप इतने प्यार से प्रोग्राम को इंजॉय करते हैं। थैंक यू।
2: ये है
3: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com। कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782883 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
2: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
5: Dad,
6: what's wrong, beta?
5: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Leica Gold. Make it a date.

0: है लाइका गोल्ड। अपनों को अपनों के करीब। आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
1: Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
4: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
5: Southall Travel, Atoll Protected.
6: Watford mein dinner plans, thoda classy, thoda desi.
7: To aaiye Godfather and Co. Vivek House Bar and Kitchen.
6: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923-2272-74. Book your table today.
8: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11,
9: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
11: Danu 11, 11. Danu Properties.
12: Dubai is coming to London.
13: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
12: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
13: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
12: Hurry and register now
13: at nknpropertyexpo.com.
12: Your next investment could begin here.
13: Official radio partner, Leica Radio.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
14: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
16: सप्टेम्बर महीना मा हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रह्यो छे।
17: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
18: ए तमे स्त्री अमने छे ने पुरुषो नाम खोटा होबोवानो बंद करो।
16: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लईने आवी रह्या छे सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान मा। हवे राइसली, पॉटर्स बार, इलफर्ड, साउथ लंडन अने ल्यूटन मा। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद राखजो।
0: Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, दिल का क्या कसूर, 1992 की फिल्म थी। एंड दूसरा गीत आपने सुना सपने साजन के फिल्म से, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ें शामिल थी दोनों गीतों में। वैसे कहते हैं कि खूबसूरत अल्फाज जो होते हैं जो हमारी मोहब्बत को भी एक्सप्रेस करते हैं, हमारी आँखों में जब आंसू आते हैं उसे भी एक्सप्रेस करते हैं, तो खूबसूरत अल्फाज जो लिखते हैं उनके नाम करते हैं हम इन गीतों को, और जिनको ऐसे अल्फाज बहुत पसंद आते हैं उनके नाम करते हैं हम इन दोनों गीतों को। और जिन्होंने इन गीतों को लिखा आज हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। जी हाँ, मेरा इशारा है अनवर सागर की तरफ। अनवर सागर जी 30 अगस्त 1949 में उनका बर्थ हुआ था और 3 जून 2020 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ही वॉज एन इंडियन हिंदुस्तानी पीपल पोएट एंड ऑल्सो अ लिरिसिस्ट, एंड उन्होंने काफ़ी गीत लिखे हैं 80s और 90s के दशक में। और श्रोताओं के लिए वो गीत ख़ास हैं क्योंकि वो उनकी दिल की आवाज़ थी। दिल से अगर उन गीतों को सुनो तो मज़ा आ जाता है। जैसे कि मेरे साथ ही लिख रहे हैं कि सरिता दोनों गीत बहुत पसंद आए। उनके लिखे गीतों में एक सादगी थी, एक एहसास था, और सबसे बढ़कर आम इंसान के दिल की बात कहने की खूबसूरत काबिलियत थी उनमें। आना मेरे प्यार को फिल्म कबूतर से था ये गाना, 1987 की फिल्म थी दिल का क्या कसूर। देन इसके अलावा उन्होंने बहुत से गीत लिखे, लेकिन एक बात बताना चाहूँगी कि बहुत से गीतों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो समीर ने लिखे गीत, समीर अनजान ने, या फिर अनवर साहब ने लिखे, अनवर सागर जी ने लिखे। तो कहीं कहीं उनकी विकिपीडिया के हिसाब से तो बहुत सारे गीत उन्होंने लिखे, लेकिन 90s ज़्यादा गीत। ही गॉट हिज फर्स्ट ब्रेक इन द फिल्म जख्मी रू इन 1982 एंड इनिशली ही हैड अ स्ट्रगल फॉर मोर देन डेके एंड टू फाइनली सेट अप यू नो अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए। देन वादा रहा सनम, ये गीत उनका लिखा हुआ है, अलका याग्निक और अभिजीत भट्टाचार्य ने गाया, खिलाड़ी फिल्म का 92 का गीत। देन आफ्टर दिस सक्सेस ही पेंड सेवरल हिट्स ट्रैक्स लाइक दिल का क्या कसूर और सपने साजन के, विजय पथ का गीत यार आना, कितने दूर कितने पास। फिर उसके बाद 2000 में उन्होंने काफ़ी सारे गीत लिखे हैं। उन्हें सुर के साथ चलना आता था और धुन की रूह को समझना उनको बहुत अच्छी तरह से आता था, और फिर कुछ ही पंक्तियों में वो एक पूरी कहानी की कहानी बना देते थे। अनवर सागर ने इसी हुनर को अपना ख़ास अंदाज बनाया था। और मैं इनके गीत नहीं प्ले कर पाऊँगी, शायद एक और गीत 1980s का, पर क्योंकि आप जानते हैं कि ये लाइक अ गोल्ड है और यहाँ पर पुराने गीत होते हैं, नए गीत 90s के बाद के नहीं आपको सुनवा पाऊँगी। सो चलिए, अब तक के गीत आपको दोनों पसंद आए ये जानकर बहुत अच्छा लगा।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इनके ज़रिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा ही आसान है। आपने क्या करना है, यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के ज़रिए आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा होती हैं साथ ही साथ, और आज आपका 1 British sterling pound कैन गेट यू 128 rupees and 75 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From plasterers to plumbers and electricians to engineers, Britain is filled with doers. And to get the job done, they drive Ford commercial vehicles. This summer, test drive the Ford Transit Custom, Britain's favourite van for 6 decades, and save at least £3,000. Or, if you own a pickup, book a test drive in the Ford Ranger and get £2,000 off the nation's best-selling pickup. Search Ford Test Drive Event, because some sleeves never roll down. Ready, set, Ford. Contract by 30th of September. Exclusions apply. Bestseller claims based on SMMT registration data. To verify, search Ford Best-Selling Commercial Vehicles UK.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
5: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected.
8: Dubai is coming to London.
9: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
8: At a London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
9: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
8: Hurry and register now
9: at nknpropertyexpo.com.
8: Your next investment could begin here.
9: Official radio partner Leica Radio.
10: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 073-00-99-8823।
11: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है। शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए। गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब हैं। जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी। आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉग के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं।
12: इल्फर्ड, अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए।
13: बीकानेर वाला परंपरा भी,
14: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसिल, इल्फर्ड, IG26HA। कॉल 07555-50-6015।
15: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The new properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 02-03-963-5757 to arrange your meeting.
16: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
17: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
16: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
18: Like a gold. London का number 1 Asian retro music station अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे।
19: Feel good track brought to you by Derry Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Dharmendra and Hema Malini ji ki film Jugnu se maine ye gana ab tak pahunchaya aur is film ko direct kiya tha Pramod Chakravarti ne. Sangeet hai Sri Barman sahab ka. Bahut pyara geet tha aur mujhe umeed hai ki aap sab ne इस गीत को इन्जॉय किया. ये गीत क्यों शामिल हुआ ये भी बता दूँ. ये फिल्म आज ही के दिन इन 1973 में रिलीज़ हुई थी. 30th अगस्त 1973 को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसका म्यूज़िक रिलीज़ हो गया था पहले हो जाता है ना 24th ऑफ मई 1973 में. गाने बड़े मशहूर हो गए थे फिल्म आने से पहले ही. और तेरा पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए तो वो बात तो सच ही निकली और सच है कि दोनों ने एक दूसरे का पीछा नहीं छोड़ा. बहुत प्यारी फिल्म थी. अगर नहीं देखी जरूर देखिएगा.
0: This is Like a Gold.
2: और अब Like a Gold पर मैं जल्दी से आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे दूं. और ये इन्फॉर्मेशन ये है कि Like a Radio Network टीम अप विद एब्रॉक्स इवेंट्स फॉर फहाद याफ paying tribute to Mohammad Rafi and Kishore Kumar accompanied by Manisha Sharma and Sunday 6 September ko from 5 p.m. at Hero Arts Center mein ye show ho raha hai. Hachan mein hai ye. And send in the word Fahad for you to be in to win two tickets to the memorable show. And don't forget you can also purchase tickets from Harrow Art Center website. So aaj bhi kya tarikh hai, aaj hai Sunday, to aaj hamare program mein competition hai. To aapne sirf word likhkar bhejna hai Fahad, FAHAD फहाद नाम लिखकर भेजिए और आपको मिलेंगी दो टिकटें. और अगर आपको एडिशनल टिकट्स चाहिए तो आप हैरो आर्ट सेंटर की वेबसाइट पर जाके टिकटें खरीद सकते हैं. तो देर मत कीजिएगा, जल्दी से अपनी एंट्री मुझ तक पहुंचा दें.
0: सरिता सबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइक अ गोल्ड.
2: और इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँ और वो इन्फॉर्मेशन क्या है ये जान लीजिएगा. ये इन्फॉर्मेशन है कि उदित नारायण एंड आदित्य नारायण दोनों आ रहे हैं. 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बले ऑन संडे 28th दिसंबर को. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है रेडियो लाइक अ रेडियो नेटवर्क. और कविता कृष्णमूर्ति जी आ रही हैं रॉयल एल्बर्ट हॉल में ऑन संडे 1st November एंड ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एज अ दिवाली स्पेशल जिनका दिवाली शो भी हो रहा है. टिकट्स फ्रॉम द वेन्यू बॉक्स ऑफिस आप ले सकते हैं. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क.
0: Sarita Sabarwal, the biggest classics on Like a Gold.
2: एक और ज़बरदस्त गाना मोहम्मद रफ़ी साहब एंड लता जी की आवाज़ों में. और ये फिल्म भी आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी. फिल्म का नाम हाथ की सफाई.

0: प्रकाश मेहरा साहब ने बनाई थी ये फिल्म, उन्होंने डायरेक्ट की थी। कल्याण जी आनंद जी का संगीत था और गुलशन बावरा ने लिखे थे इस फिल्म के गाने। बहुत प्यारी फिल्म थी, हाथ की सफाई, जिसमें विनोद खन्ना थे, हेमा मालिनी एंड रणधीर कपूर। और ये फिल्म भी आज ही के दिन 30th of August 1974 में रिलीज हुई थी। Like Extra Podcast Update. राइट, आपको बता दें कि इस बारी के पॉडकास्ट में एपिसोड 31 में द दिवाली स्टोरी शोकेस होगा। राज बदन एंड खुश आर द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड द टीम ऑफ दिस इनक्रेडिबल शो टेक अस बिहाइंड द दिवाली स्टोरी, एक्सप्लोरिंग व्हाई द रामायण स्टिल मैटर्स टुडे। एंड नितिन पालन, जो कि फाउंडर हैं सनातन इवेंट्स के, उन्होंने बहुत सी बातें बताई हैं और ये भी बताया कि ये रामायण जो है स्टोरी, ये इंग्लिश में आपके सामने पेश की जाएगी। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected. Visit TravelHubWorld.com.
2: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
3: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
4: Croydon

0: अनदर ब्यूटीफुल गाना, मुझे उम्मीद है आपने भी गुनगुनाया होगा इस गीत के साथ साथ। आखिर क्यों, ये था फिल्म का नाम। ये भी आज ही के दिन 1985 में रिलीज हुई थी, 30th of August 1985। राजेश खन्ना थे इस फिल्म में, स्मिता पाटिल एंड राकेश रोशन ने काम किया था। जे ओम प्रकाश साहब की फिल्म थी, राजेश रोशन जी का संगीत और गीत लिखा था इंदिवर जी ने।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, भी अगर आप पैसे कहीं भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बता दें आपको कि आपको एक पाउंड के बदले LemFi वाले दे रहे हैं 129 rupees and 21 paisas, पाकिस्तानी रुपीस 375.7 एंड श्रीलंकन रुपी 444.7, बांग्लादेशी टका 166.57, अफगानिस 88.35 एंड US डॉलर्स 1.35।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: राइट आज गोल्ड का रेट है 105 pounds and 92 pence का 1 gram सोना।
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
0: जी हाँ, लाइका रेडियो।
3: हेलो, वेक अप विद मी काजल ऑन द ब्रेकफास्ट शो, वेयर आई टेक यू डाउन मेमोरी लेन, गेट इंस्पायर्ड बाय मॉर्निंग मंत्रा, मंडे टू फ्राइडे 6 a.m. to 10 a.m. लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
0: चलिए, भी लाइका रेडियो नेटवर्क के जरिए हमारी मुलाकात होती है एवरी सैटरडे एंड संडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा इंतज़ार रहता है, क्योंकि मुझे भी आपका इंतज़ार हमेशा रहता है। आज के दिन बहुत सारी फिल्में रिलीज़ हुई, जैसे जुगनू का गीत सुना, 73 में रिलीज़ हुई हाथ की सफाई, 74 में, 82 में आई थी धर्मकांटा, जिसके गाने इतने अच्छे नहीं हैं इसलिए मैंने कोई गाना प्ले नहीं किया, 1985 में आखिर क्यों एंड साजन इन 1991 में, लव एंड मिस्टर बेचारा 96 में हुई थी रिलीज। तो मैंने आपको सुनवा दिया गाने, लव और साजन के गीत आप प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में सुन पाएंगे, एंड शैलेंद्र जी को भी हम याद करेंगे इन द नेक्स्ट आवर, और उनके लिखे हुए कुछ एक गीत, खूबसूरत गीत मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज के प्रोग्राम का अगला गीत हमें पहुंचाएगा कहाँ, न्यूज़ तक, और अगला गीत भी बहुत खूबसूरत है जिसे मैंने झील के उस पार से चुना है।
4: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड, और उत्सव भारत है स्टार भारत।
5: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
6: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
5: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
6: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट, कॉल 01923227274, बुक योर टेबल टुडे।
7: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24-hour line.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms just $8.96, 10 kilograms only $16.96, एंड द बिग 20 kilograms pack just $29.96, परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
2: Dad, Dad, Dad!
9: What's wrong, beta?
2: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Dadi in India.
9: I will run down to the money exchange now.
2: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
2: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: September महीना माँ हास्य नो डबल धमाको फरी आवी रहे छे।
11: तमे बता पुरुष हो तो लगने लगने कुवारा हो छो।
12: ए तमे स्त्री अमने ऐसे गए पुरुष होना खोटा होगो वालो बंद करो।
10: कॉमेडी किंग निमेश शाह अने क्वीन ऑफ कॉमेडी मल्लिका शाह लेने आवी रहे छे। सुपर हिट गुजराती नाटक हालो पटेल भाई नी जान माँ। हवे राइसली पॉटर्स बार इलफर्ड साउथ लंडन अने ल्यूटन माँ। टिकट्स अने वधु माहिती माटे आज ज कॉल करो मंजू ने ऑन 07931534270। नाटक नु नाम याद रखजो।
13: The wait is finally over.
14: अब सही सुर लगा रहे मुमताज।
13: Mirzapur is coming to the big screen.
15: गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से।
13: Power, revenge और Mirzapur की गद्दी के लिए फिर मचेगा बवाल।
16: अबे कालीन भैया है वो, king of Mirzapur।
13: पंकज त्रिपाठी as कालीन भैया, अली फजल as गुड्डू पंडित और Mirzapur के iconic characters. Just 5 days to go. Mirzapur the movie releasing in cinemas September 4th.
15: Mirzapur में एक ही दरवाजा है यादव जी। दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
17: महाराजा टूर्स के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा। फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन, फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शन सब इंक्लूडेड। विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846।
18: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
19: अपना बनाया तेनु,
18: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics.
20: This is the number one Asian commercial group in London, consisting of Leica Radio and Leica Gold.

0: ये आपने सुने एक गीत मैंने फिल्म लव से चुना और दूसरा गीत था फिल्म साजन का। और इन्हें चुनने की एक वजह ये कि साजन वॉज रिलीज्ड इन 1990, संजय दत्त माधुरी दीक्षित ने इस फिल्म में काम किया था। तो आज कितने साल हुए इस फिल्म को रिलीज हुए? 36 इयर्स, यस। सो 36 इयर्स हो गए इस फिल्म को रिलीज़ हुए और आज भी इसके गाने कितने पसंद किए जाते हैं। लॉरेंस डिसूजा ने इसे डायरेक्ट किया था, नदीम श्रवण का संगीत था, समीर ने लिखे थे इस फिल्म के गाने। आप सभी जानते कि संजय दत्त, सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित की मुख्य भूमिकाएं थी इस फिल्म में। और लव 1991 में रिलीज हुई थी, जिसमें सलमान खान ही थे और हीरोइन थी इनकी रेव थी। सुरेश कृष्णा ने इसे डायरेक्ट किया था और संगीत था आनंद मिलिंद का। दोनों गीतों में एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ शामिल थी। पहले गीत में अलका याग्निक जी ने साथ दिया और दूसरे गीत में चित्रा ने साथ दिया इनका। उम्मीद करती हूँ दोनों के दोनों गीत आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर आपने अभी अभी सुनना शुरू किया है तो एक गुजारिश है आपसे कि 4 बजे से मेरा साथ देना शुरू कीजिएगा। और जिन्होंने फहाद लिखकर भेजा था कंपटीशन की टिकटें जीतना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिएगा, मैं ज़रूर आपका नाम अनाउंस करूंगी इफ़ यू आर द विनर।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जरिए अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो इनटू द ब्रांच एंड ऑनलाइन और एसबीआई यूनो मोबाइल ऐप के जरिए पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। आज आपको 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले मिल सकते हैं अप टू 128 रुपीज़ एंड 75 पैसास।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Toothpaste ordered and arriving today with Amazon Prime. Phew, now that's off your mind, you can think about something else. Like the actual age of your toothbrush. Is it a few weeks? A month? A year? It could be a year. Better get a new one. Maybe two. Same day delivery. It's on Prime. Geographic restrictions, cut-off times and T's and C's apply. Details on product page.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics.
3: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।
4: नमस्कार, मार्च 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન। આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો। માત્ર 4499 પાઉન્ડ્સ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે। સીટ્સ લિમિટેડ છે એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો। મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર। જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે।
5: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
6: One performer,
7: countless personalities,
6: a whole universe of entertainment.
7: Sunil Grover, live UK Tour 2026.
6: 29th October, OVO Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
7: From Gutti to Dr. Mashur Gulati, from Rinku Bhabhi to brand new surprises.
6: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
7: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
6: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
8: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सलेंट।
9: फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
10: Dad,
9: what's wrong, beta?
10: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
9: I will run down to the money exchange now.
10: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
9: Oi, balle balle. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
11: Pal bhar ke liye.
12: Kishore Kumar ki masti aur Mohammad Rafi ki soulful आवाज. Ibrox Events presents the iconic duo Rafi and Kishore, featuring Fahad Yaf, accompanied by a 7-piece band and Manisha Sharma. Golden Era ke evergreen gaano ko relive kijiye. Sunday, 6 September, 5 PM at Hero Arts Center. Tickets start from just £25. Book tickets at heroartscenter.com. Box office ka number hai 02023737161.
2: Exclusive radio partners, Leica Radio Network.
13: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
14: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
15: Honslow, ab India ka favorite swad bilkul aapke paas.
16: परंपरा भी
17: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो TW31QT. कॉल करें 07487-687-885.
18: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
19: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
20: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: चित्रगुप्त जी का संगीत पद किया हुआ गीत आपने सुना। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। एक भूली बिसरी याद थी और जिसे मैंने फिल्म पतंग से चुना था। राजेंद्र कृष्ण जी ने लिखा था इस गीत को। और प्रोग्राम के इस भाग में कुछ एक गीत मैं शैलेंद्र जी के लिखे हुए अब मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं शैलेंद्र जी के लिखे हुए। शैलेंद्र जी के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, पर थोड़ी सी बातें उनके बारे में जरूर करूंगी आफ्टर दिस सॉन्ग।
1: फील गुड ट्रैक ब्रॉट टू यू बाय डेरी वैली,
2: सॉफ्ट एंड टेंडर लाइक ग्रैंडमास वार्म हग। डेरी वैली पनीर इज मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स एंड जीरो प्रिजर्वेटिव्स। विजिट dairyvalley.net।

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: हिंदी फिल्म संगीत के उस सुनहरे दौर में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि जिए जाते थे, एक ऐसा दौर था जब शब्दों में मिट्टी की खुशबू थी, प्रेम में सादगी थी और ज़िंदगी की छोटी छोटी बातों में भी कविता दिखाई देती थी। आज हम याद कर रहे हैं शैलेंद्र जी को, महान गीतकार, और एक अच्छा गीत वही होता है जिसमें हमें अपनी कहानी नज़र आए। शैलेंद्र जी का जन्म हुआ था 30 अगस्त 1923 में, तो आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। कभी पहला प्यार, कभी किसी की याद, कभी बिछड़ने का दर्द और कभी किसी अपने के साथ बिताए वो खूबसूरत से पल जिन्हें हम उम्र भर अपने दिल में संभाल कर रखते हैं, ऐसे गीत लिखते थे शैलेंद्र जी। ये एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में गीत गूंजने लगते हैं। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर होता होगा। उनके शब्दों में आम आदमी की ज़िंदगी थी, मोहब्बत थी, दर्द था, उम्मीद थी और ज़िंदगी को देखने का एक बेहद सरल आसान सा तरीका था। उनकी नज़र ऐसी थी, उनका नज़रिया ऐसा था। और गीत आपने सुना, पर इनके बारे में तो एक्चुअली बहुत कुछ हमारे साथी ही जानते हैं, लेकिन थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूँगी ज़रूर कि ये मुंबई आ गए थे, लेकिन फिल्म मेकर राज कपूर जी ने इन्हें सबसे पहले नोटिस किया था और इन्होंने एक लेटर में लिखा था, एक पोयम जलता है पंजाब, मुशायरा में इनकी मुलाकात हुई और वहीं से फिर उन्होंने याद रखा हमेशा राज कपूर साहब ने, और उन्होंने शंकर जयकिशन जी से मिलवाया। पतली कमर है, बरसात में हमसे मिले तुम, ये दो गीत जो थे वो बरसात के लिए उन्होंने लिखे और शंकर जयकिशन ने इन्हें कंपोज किया था। उसके बाद आवारा, श्री 420 जैसी बहुत सी फिल्मों में उन्होंने साथ दिया, बहुत सी फिल्मों में शंकर जयकिशन का संगीत, राज कपूर साहब की फिल्में और शैलेंद्र एंड हसरत जयपुरी साहब ने ज़्यादा गीत लिखे थे। तो चुन रही हूँ उनमें से ही गीत जिन फिल्मों में ये तीनों का ट्रायंगल था, लेकिन कुछ गीत हसरत साहब ने लिखे और कुछ लिखे शैलेंद्र जी ने। आई होप कि मैंने जो गीत चुने वो सभी शैलेंद्र जी के ही लिखे हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: रफ़ी साहब की आवाज़ और शैलेंद्र जी की कलम का जादू, बहुत खूबसूरत गीत था फ्रॉम द फिल्म दिल एक मंदिर। और शैलेंद्र जी की खासियत थी कि वो कठिन भावनाओं को, मुश्किल भावनाओं को इतनी आसान शब्दों में वो कह जाते थे, लिख जाते थे। बहुत प्यारे प्यारे गीत लिखे हैं। आपको याद होगा मेरा जूता है जापानी, दिल तो चाहता है कि सारे गीत, जीना यहाँ मरना यहाँ, ये गीत एक्चुअली उन्होंने स्टार्ट किया था लिखना लेकिन पूरा नहीं कर पाए थे। उसके बाद उनके बेटे शैली शैलेंद्र ने उस गीत को पूरा किया था। चलिए अब आगे बढ़ जाए।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai, and contact Southall Travel today on 0208-574-8410. Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Hello?
3: Mel, something huge has landed.
2: The UFOs? It's all over the news.
3: Better. The mini sale event. Hurry up and get down here.
2: I think that's why the aliens are here too.
3: I do now. Gotta go.
4: The sale event has landed. Out of this world offers across the entire range from 3rd to 7th of September at your local mini retailer. Applicable on new mini orders placed during the sale event and registered by 31st December 2026. Visit mini.co.uk/sale-event.
5: Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
6: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट TravelHubWorld.com।
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी डी जर्नी ऑफ राम।
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सेप्टेम्बर।
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है।
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन।
10: एक्सक्लूसिव टीवी पार्टनर स्टार प्लस एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
11: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
12: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
11: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
12: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
11: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
12: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
11: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
12: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
13: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
14: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
15: Dubai is the place.
14: 11, 11. Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
16: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
17: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 hour line.
18: What food make dinner?

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: शैलेंद्र जी की कलम का जादू आप तक पहुंचा रही है सरिता।

0: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, a pound in your pocket can get you Indian rupees today, 129.19 paisas. Pakistani rupees 375.58, Sri Lankan rupees 443.89, Bangladeshi taka 166.51 and Afghanis 88.10, US dollars 1.35.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LAIKA Gold.
3: LAIKA Gold.
0: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: It's £105.92 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: हाय मैं हूँ अश्विनी हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए
1: एक और यादगार गीत 3420 1958 की फिल्म थी वेल विंटेज गोल्ड प्रोग्राम नहीं चल रहा है लेकिन शैलेंद्र जी को हम याद करें इन गीतों के जरिए जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है विंटेज गोल्ड सुनेंगे आप 7 बजे से लेकर 10 बजे तक।

0: जापानी।
1: आजकल कहाँ बनते हैं ऐसे गीत, मुकेश जी की आवाज़ में गाया हुआ गीत शैलेंद्र जी ने लिखा था। और भाई अब एक गीत की और बारी होगी और वो मैंने गीत चुना है बंदनी से। वैसे तो सजन रे झूठ ना बोलो वो भी गीत सुनाना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, वक्त की कमी है। अब जो विनर हैं उनके बारे में भी बता दूँ कि रंजू भरादिया, आपने भी एंट्री ली थी कंपटीशन में और आपने जीती हैं दो टिकटें। आप जाएंगी कहाँ पर, आप जाएंगी फहाद का शो देखने के लिए, एंड दैट्स हैपनिंग ऑन 6th of September फ्रॉम 5 PM हैरो आर्ट सेंटर में, और टिकट्स आपकी वहीं आपको मिलेंगी। मैं सरिता इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। लाइक अ रेडियो नेटवर्क के सभी प्रोग्रामों को इस तरह से इंजॉय कीजिएगा। जैज़ इज़ नेक्स्ट, नहीं सैंडी इस नेक्स्ट मेरे बाद आ रहे हैं, उनका साथ दीजिएगा। बाय फॉर नाउ।
2: ये है लाइका गोल्ड, आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस। उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत।

0: Vintage Gold every weekend with Sandy Shah.
1: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड, मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड। रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे 10 to 1।

0: चीज। आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: सैंडी शाह कंटिन्यूज विद लंदन्स बिगेस्ट बॉलीवुड क्लासिक्स। Feel good hits in the sun with Like a Gold.

0: हेमंत कुमार की आवाज, फिल्म का नाम था पहली झलक, सी रामचंद्र का संगीत, विच इज एक्चुअली फ्रॉम 1955, नॉट 1954. एंड या, एज आई सेड टू यू, ट्रूली वंडरफुल वर्ड्स एंड रियली रियली वेल सॉन्ग बाय हेमंत कुमार. गॉट अ फ्यू मैसेजेस कमिंग, उसके बाद हम सुनेंगे आवाज मोहम्मद रफी साहब की. फिल्म का नाम होगा आखिरी दाव फ्रॉम 1958. One, I don't know, he's got so many iconic songs. I can only say one of his most iconic, but there's just so many to name. And then we're heading up towards the news at the top of the hour. Don't forget to join me in the second hour of the Bank Holiday Special, Vintage Gold.
1: Vintage Gold with Sandy Shah. Like a gold. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस. उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
3: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ.
4: अपना बनाया तेनू,
3: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का. वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में. टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20. VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल. बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216. टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फर्ड.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
6: साफो ट्रेवल. At all protected.
7: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in-store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
8: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
9: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
10: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
9: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
10: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
9: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner, Leica Radio Network.
11: The wait is finally over.
12: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
11: Mirzapur is coming to the big screen.
13: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
11: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
14: Abe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
11: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Just 5 days to go. Mirzapur the movie, releasing in cinemas September 4th.
15: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
16: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर keyfurniture.co.uk पर जाएं.
17: साउथ हॉल, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
18: बीकानेर वाला परंपरा भी,
19: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.
20: एशियन अचीवर्स अवार्ड्स फ्राइडे सितंबर 18th एट लंदन हिल्टन पार्क लेन. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Leica रेडियो ग्रेटर लंदन. Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. available at LaikaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio

0: किस्मत का लिखा होकर रहेगा. हाउ ट्रू. इट विल बी व्हाट इट विल बी. फिल्म का नाम था सगाई, आवाज थी लता मंगेशकर की. गॉट अ फ्यू मैसेजेस. उसके बाद वन ऑफ मन्ना डेज मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम, शंकर जयकिशन का संगीत. फिल्म का नाम होगा सीमा 1955. फिर उसके बाद सी रामचंद्र के संगीत पर लता मंगेशकर की आवाज एक बार फिर. फिल्म का नाम सरगम फ्रॉम 1950. विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह.
1: विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: From plasterers to plumbers and electricians to engineers, Britain is filled with doers. And to get the job done, they drive Ford commercial vehicles. This summer, test drive the Ford Transit Custom, Britain's favourite van for 6 decades, and save at least £3,000. Or, if you own a pickup, book a test drive in the Ford Ranger and get £2,000 off the nation's best-selling pickup. Search Ford Test Drive Event, because some sleeves never roll down. Ready, set, Ford. Contract by 30th of September. Exclusions apply. Bestseller claims based on SMMT registration data. To verify, search Ford Bestselling Commercial Vehicles UK.
3: Ye hai. Like a gold. Like a gold.
4: TravelHubWorld.com. कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays. हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
4: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96 एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. मेक एवरीडे ग्रैंड.
7: लंदन वालों ध्यान से सुन लो कि फर्नीचर की धमाकेदार फ्लैश सेल आ गई है. शानदार इटालियन और जर्मन डिजाइन वाले बेडरूम और डाइनिंग फर्नीचर पर भारी छूट का फायदा उठाइए. गद्दों और अलमारियों पर जबरदस्त कटौती, सभी दीवान सेट्स के साथ बिल्कुल मुफ्त हेडबोर्ड, सभी सामान तत्काल डिलीवरी के लिए दस्तयाब है. जल्दी कीजिए, ये फ्लैश सेल सोमवार शाम 6 बजे खत्म हो जाएगी. आज ही हमारे हैरो, पिकलवुड और स्लॉगो के शोरूम्स में आइए या फिर kfurniture.co.uk पर जाएं.
8: Make your bank holiday taste like summer with Cake Box. Cool down with our new limited edition ice cream sundaes in mango, chocolate, strawberry and vanilla. And this bank holiday weekend, they're 3 for 2. Saturday to Monday only, in store and online at cakebox.com. Your bank holiday just got a whole lot cooler.
9: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
10: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203773633 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
11: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
12: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
13: 3 days to go. UK, something big is coming. A whole new universe is taking shape. The Big Bang is loading. Stay tuned.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
14: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. Leica Gold. feel-good tracks all weekend with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: जस्ट सब्लाइम विंटेज दैट इज, मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम अंदाज. नेक्स्ट सॉन्ग अगेन अ डबल बिल, इट्स गोना बी मुकेश अगेन, दिस टाइम विद गीता दत्त on a really wonderfully composed song by Roshan. Film ka naam hai Bavre Nan from 1950.
1: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shah. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: loss, ab her stop loss.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
3: ताज़ा करें अपनी यादें Leica Gold के साथ.

0: सब क्लॉस अब है स्टॉप क्लॉस।
1: लाइक रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन। Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
2: Leica Gold पर हर रात की यही रीत, पुराने मगर सदाबहार गीत।

0: अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
2: फिर
3: रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
2: फिर
3: फुर,
2: फुर,
3: फुर, फुर।
1: बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
3: कह दो
1: कह दो
3: कह दो
1: कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: Like our gold.
1: जिंदगी बर्बाद होगी।
2: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: Function रखा हुआ है।
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
5: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग,
4: डेजर्ट सफारी,
5: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
4: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: Dad,
7: what's wrong, beta?
6: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
7: I will run down to the money exchange now.
6: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
7: Oi, bale bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
6: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
8: Sari Raat, बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।